आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्ती सुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: भारतीय सौर दिनांक 19, सौर महिना ज्येष्ठ 1948। विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज मंगळवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण नवमी अर्थात 9 जून 2026।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

श्रोते हो भक्तीसुधा इंटरनेट रेडिओवर आत्ताच आपण ऐकलीत नामसाधना, प्रस्तुती भक्तीसुधा।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

भूतंच सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये।

आपस्रजन्तुस्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निचदेव्ये मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्य

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

भूमिप्रदाय मनोवांछित फलप्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः।

नमः नमः ओम बुधाय नमः ओम गुरवे नमः ओम भृगवे नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम पुच्छनायकाय नमः ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति किं विक्षितेन भवता भूवियेन नान्यः कश्चित् मनोहरति नाथ भवानत एहि ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं बटुक भैरवाय आपदुद्धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टं हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयं कुरु कुरु व्यवहार लाभं वर्धय वर्धय रणे शत्रुं विनाशय विनाशय वीनापत्ययोगं निवारय निवारय संत्युतिप्तिं कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिं कुरु कुरु हुं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकं द्व्याहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षयरोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यान पि कश्चित देश काल स्थान सर्वान हन हन विषम मेघ नदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथग चोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यं विदारय विदारय परचक्रं निवारय निवारय दह दह रक्षां कुरु कुरु ओम नमो भगवते ओम नमो नारायण हुं फट स्वाहा ठट ठ ओम राम ह्रीं हृदयस्व देवता। फलश्रुति। एषा विद्या महानाम्नी पूरा दत्ताशतकृतोः असुरान हन्तु हत्वा तान सर्वाश्च बलिदानवान यपुमान पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान तस्य सर्वान हिंसति यस्यात दृष्टिगतं वीशं अन्य दृष्टि विषं चैवन देयं संक्रमे ध्रुवं संग्रामे धारयत्यंगे उत्पात शमनि स्वयं सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः
कुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्य संपदः लभते नात्र संदेहो नान्यथा नदितं भवेत गृहीतो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च इमां विद्यां शिरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः सर्वशत्रुभयं याति शीघ्रम्।

अष्ट द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीम ठस् स्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीम ठस् स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम् आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाय देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुख हरणं मंगलकरणं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत् कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधि भयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्व कामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभं भवतु नवनाथ सिद्ध मंत्र ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

किंचित हासो नीति जप्रति बोलिलिए वचन ऐकते अगे माते मेनके मजसी ऐसे लावू नका बोलसी यद्यपि सकळ बारा मासी मज अहर निशी

घर अंगन लागे सोना, तेरी माई पी परदेश गान कीनो, घर अंगन लागे सोना। इट्स स्टोरी ऑफ ऑल आवर डेली लाइफ।

ख्याल में शब्दों की क्या महत्व है, धन जोवन, धन और जोवन। तो गुरु जी की बंदिश है, गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की, कह रहे कि धन जोवन नदी नाव संजोग, जैसे नदी के साथ नाव का संपर्क है। धन जोवन नदी नाव संजोग, कहत मुनि ज्ञानी जग में

श्रोते हो भक्तीसुधा इंटरनेट रेडिओवर आत्ताच आपण ऐकलीत नामसाधना, प्रस्तुती भक्तीसुधा।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतिचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।